हम कशवर उड़ुतकायिं एकति गणक विफावनिको फहेति मन रसकलांगे इदेति वकिकुल्लिविकं खाफिरु इमीहुं नुदननीहे ये अदिति मन रसकलांगे दिरे खोम्मे इच्चे फेनुं हिद्देवीमे फहे एवरिं ईमान नुवनीहे ये।

0: Mamma, badu haveja.
1: Tarifla, Sonia kaatu buni. Mamma ibeche mige muluwa.
0: Papa, gaadi jehaniye.
2: Tarifla madu kobbada.
3: Sonia, debel maasha school alna.
4: Tumhi ne to kaha tha. कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस से भी?
5: मामा फोन है का हाँ मादमारे तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैस फोन का डोंटा
6: कोको डोंटे कमी कड़े काले नूले वेने दे सोनिया गाता
7: एहनी गुलुंता बदहि कुराफा दान एम गातु गावा गुलुंतका एम फुरतम इस्कंदेमा
8: एंहा सतरसे एक सालिस नुए किलोहर्ट्ज मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
9: दिवेह राज्य के अडु
10: මෙහරගඩෙන් හඳුනාගඩේ 1 මිනිත් මේ දිවිහි රාජ්‍යකයට

0: मैं रिकॉर्डिंग हाँ 30 मिनट में दिव्य राज्य का डॉल में गणेश ने बाज रहे हैं उन्होंने मैं प्रोग्राम तो बेफड़ा में गणेश तेरे ऑन रमेश
1: डिंग हड़ों शाख रंगे तो मौलोग एम में फलता है बैवर या गुड़ालिफ में हर में मौलो के राज्य के कांड फलत हो गए दिलंता रक्का तेरे कुरुम समाल कर दें जे मुहिम मुकांत ते को बह ये मैं दोगे एम फलता है बैवर की सॉली होंगे तो
0: अस्सलाम वालेकुम सॉली
2: वालेकुम
0: सलाम बाजर हैं जने के तो रमीज और शाकिर राजे राज्य कणफल तो रखा मुहिम
3: राज्य कणुत समाल गबूल कर
0: ತಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸುಮೆಂಗ್ ಹಾಯ್ ಸುಮೆಂಗ್ ಹಾಯ್ ಅದೇ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎದುರ್ಕೊತೆ ಬೇಫುನ ಖ್ಯಾಲ್ ಪಾಳ್ ಕುರಬೇನ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ ಕುರಬೇನ್ ದೆನ್ ಲವೇ ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೆಗ್ಡೆ ಫನ್ಸಾಹ ಮೇಲೆ.

हम कशवरुं उडुतकाई बिं एकति गणक विफावनिको फहेति मन रसकलांगे इदेति वकिकुल्लेविकं खाफिरु इमीहुं नुदननी हेये अदि तिमन रसकलांगे दिरे खोम्मे इच्चे फेनुं हिद्देवीमे फहे एवरिं ईमान नुवनी हेये।

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुल कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो हो केरे मिंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे राज्य क्या डूं
3: එංහා 4340 kHz medium wave 8090 MHz FM band
4: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩු

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला दो फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अधि मीडिया नेट बिल कस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबाय वायर बिल नो देखी गेंग लारी अ वीनु ये नेंगी गेंग उड़े कर नुचे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे माँ फाही।
3: टेक के दुनिया अंग अलगन में कुम्मे हफ्ता को मिकुरा दतरु तन निमे दुआ हा मरा क्या वेजे। अलगन में कुरा कुम्मे दतरु की मे दतरु तन निमे दुआ हा अलगन में ना बदल वा दुस गैक को दे दतरु तके। टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा में बड़े ती कुंफुनी तक उनके नमन दाबादल तक का बालानोला दूर कोल मकी कुरम बाण वरुगे कमेनो मैं हफ्ता खास टेक के एम में फोगे खबर तं अडवा हाला त्ये हुन तेरी तैयार तो मैं हफ्ता के खबर तक का की उस बदल कुरानी मुसारश्वान
4: खबर

0: खबरों का डे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं दिवहिराज जगड़ का खबर गड़ी प्रोग्राम मेरे गे खबर गड़ी प्रोग्राम में अपनी बदल को ले अलगना शक नसीम मेरे गे प्रोग्राम का फाहम को ले खबर तो गिते रहेगा मानी कंकमा सरकार को फंट का भय वजीर कमा हसन जरीर रईसुल जमहूरिया अयन पुरे बुंग मालूमा थाम कुर्म के रईतु गे इतबार दमहता डेमोक्रेटिक हिंगुंग हरदना कुर्मटका असासे कमे कमा सरकार कबूल कुरपा कमा रईसुल जमहूरिया दालबुंग ಕಂಡತಕಾ ಭೇಗೊತು ಇತುರ ತಿರಾಸಾಕೊ ಕಂಡುಗಡೆಗವಾ ಭಾವೆತ್ತ ದೆನಗಲೆ ದೆವೆಹೆಟ್ಟೆಲಿವಿ ಗೊತೆಕ ಎಕ್ತಿಸೋದ್ ಸಿಂದಪಾತು ಕುರುವೇಣೆ ಗೊತ್ತಕೆಂ ಹೋದನ್ ಜೇಕಮ ಮಾಸೆರಿಕಮ ದಂಡುವೆರಿಕಮ ಕಂಡುಗೆ ವಸೀಲತ್ತಕಾ ಭೇ ವಸೀರು ವಿತಾಳ್ವು ರೈಕಣ್ಣು ನತುರುಕುರ ಯಹೂದಿಂಗೆ ಉಳಂತಕ ಹಮ್ಲಾ ದೇನಕಮಗೆ ಇನ್ಸಾರ್ ಯಮನ್ ಗಹರಕಾತಿರುವ ಹೂತಿಂಗೆ ಜಮಾತು ಬುಡಿ ಹಬರು ಹಿಮಿನೆ ಅದೇಸ್ ಇತುರು ಹಬರುತ ಮಿರೇಗೆ ಹಬರುಗಳಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ एम फुरता मिबलाने कंकमा माफकुरबा मानी कंकमा सरकार कुंफुंतका भे वजीर कमा हसन जरीर रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुईज अयन कुरे खबर मे मगाम गफकोल देवमा बेवी रस्मिया तोती रईसुल जमहूरिया गे ओफी होगा एतर तफसीलाक बदल कुरानी मरियम बफा
2: माले कंकमा सरकार के कुंफनत का बेहे वजीर कमा हसन जरीर आयन कुरमट का बेवी रस्मियातुगा वजीर के मजिलु के मेंबर कम गहुआ लादे वे दिवे राज्य के सुप्रीम कोर्ट के फंडियार अलुस्तास मोहम्मद सलीम हुआ कुरमफा वजीर के मजिलु के मेंबर के हुआ के करार का वजीर वणी सोई कुरवाफा माले वजीर कमा आयन कुरवे हसन जरीर वणी मोल्दिस इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के डिप्यूटी कमिश्नर कमा कमिश्नर कम के मकाम विस अदा कुरवाफा हसन जरीर वणी मलेशिया के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी IIUM बैचलर ऑफ अकाउंटिंग गेतुरुंग मास्टर ऑफ साइंस फिनेंस हासिल कुरवाफा रेस जमहूरिया माली वजीर के मकाम हसन जरीर आयन कुरवाफा वणी ए मकाम का कुरिंग हुनवे मूसा जमीर इस्तीफा देवु माकुलिकें इस्तीफा देवुम के कुरिम मूसा जमीर वणी मिदाउर के माली वजीर कमा खारिजी वजीर कम विस कुरवाफा माली गोतुन दति हाले तेगो दंडवळग राज्य नगाफावा धरणी तंग अदा कुरेवुमगा मुहिम दावरे मूसा जमीरवणी अदा को देवाफा मियाकु राज्य के क्रेडिट रेटिंग रंगळुम फशाफावाकम फाहग को देवे
1: मालूमा थाम कुर्मकी रैतुंगे तुपार दमहट्टा डेमोक्रेटिक हिंगुं हरदना कुर्मट्टका असासी कमेकन सरकारों कबूल कुरफाकमा रैसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुईज विधाल वचे रईसुल जमहूरिया विदारवी देफु फेन निजाम कायम कुर्मकी हमेकनी गवायतों को उन्न जे कमे नूकमा तफसील मरियम वफा
2: राज्य के मालूम होता लिबिगत मुगे कानून अमल कुरम फिशिफहुं फुरतम फहर सरकार के हुरिहा वजारायकुं कानून का हाम कुरम लाजिम कुरा मालूम रईतु न फेन्नाने हें हाम कुफा वाकं इंफॉर्मेशन कमिश्नर के उफिहुं हाम कुरवा फवनी आदित्य दुहु मिकमा गुलिगिन सोशल मीडिया का हिस्सा कुरवे पोस्टेग रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुईज विदाड़वी कानून अमल कुरम फिशिफहुं मिवी बारह हरुगे तेरेगा वकी फरातकुं इदुमा कानूला रईस जमहूरिया गे उफीहा सरकार गे हुरिहा वजारायकुं कुरिंग आम को फणुआ इतम मालूमातके मिहारु आम को फावाकमा रईस जमहूरिया विदाड़वी देफु फेंड निजामे कायम कुरमकी हम एखनी गवायदे ग उन्नन जेहे खमे नूखमा अदि रईतुंगे इतुबारु दमहट्टा डेमोक्रेटिक हिंगुं हरदना कुर्मट्टका मौलुमा धाम कुर्मकी असासी कमेगे गोतुग सरकारुं कबूल कुरव्वाकम एमनिक्फान विदाळुवे मी देफु फेन्न निजामे कायम को आम मौलुमातु फसेहन लिबेन इंतिजाम हमजेसुमा कुरमुंदा मसेकेत्तका जिम्मादारु कुरुवंवेस हरदना कुर्म कुरवुणु मुहिम मसेकतेक्कम फाहग कुरेव्वे रईस जमहूरिया के पोस्ट गवणी जिम्मादार सरकार बिना कुरवम कुरवा मसेकतुग मिहोदन कामयाबी हासिल कुरम मसेके कुरवे हुरिहा मुजफुनशा इदारात कुंकुरवे मसेके फाहग कुरवा शुकुर अदा कुरवाफा आदि कुरियंग तनुगवेस डिजिटल निजाम गे तेरें रईतुन वीहा विस लुफसेह कमायको मालूमात लिवें हुन्नानिकं कशवरको सरकार गे निम्मुन तहुग रईतुंगे बैवेरिवुं इतुर कुरुम गे लंडुदंडे हासिल कुरुम मसेके कुरवानिकं गे यकीनकं एवं फानवाणी देवाफा मौलुमात होदा लिबिगतुम गे हगुग गानून गे तीरिस हेवण माद्दाग दावदुत गे इदारातकुं अमिल्ल इसनेगुमा तेरा मौलुमातें हाम कुरन जेहकम वणी बयां कोफा ए माद्दाग वागतु मे मौलुमात हाम कुरन जेहनी हाम एकन एकंकम एकन हानि नुआने गुतु गे मतिं रईतुं गे मसला हतटका मदुगें आहारकु एफहारु नुत दावदुत गे इदारायकुं खंडाला एवर अवस मुद्दते गे तेरेगा

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी एकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं